अस्सलाम वालेकुम सामी, ये सदाए तुर्की है। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 24 मई बरोज़ इतवार है। इस वक्त अंकरा के मुकामी वक्त के मुताबिक सपहर के 3, पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक शाम के 5, भारत के वक्त के मुताबिक शाम के 5:30 और बांग्लादेश के वक्त के मुताबिक शाम के 6 बजे हैं। सामिन, आप हमारे निश्चात को शॉर्ट वेव 16 मीटर बैंड 17,580 किलो हर्ट्ज के अलावा तुर्कसेट 3A ईस्ट और 4A वेस्ट समेत हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं। और आज हमारे प्रोग्राम में अलग तरतीब खबरें और सिलसिलावार प्रोग्राम फ़लस्तीन एक अनकही दास्तान और जुग्राफियाई मईशत पेश किए जाएंगे। हमारा प्रोग्राम हसब मामूल 1 घंटे तक जारी रहेगा। आज आपकी मेज़बान है मिसबा शाहीन और स्टूडियो में हमारे साथ तकनीकी तआवुन कर रही हैं उसके खुराई।

ने शिरकत की। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान अमरीका जंग के खात्मे के मुज़ाकरात बड़ी हद तक मुकम्मल हो चुके हैं और एक मुआहिदा तय पाने को है। सोशल मीडिया से जारी करदा बयान में ट्रंप ने कहा है कि इस तारीखी मुफाहमत में अमरीका, ईरान और कई दीगर ममालिक शामिल हैं। अमरीका, इस्लामी जमहूरिया ईरान और दीगर मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान एक मुआहदे पर मुज़ाकरात बड़ी हद तक मुकम्मल हो चुके हैं और मुआहिदा आखिरी शक्ल इख्तियार करने को है। उन्होंने कहा है कि मुआहदे की आखिरी तफसीलात और नुकात इस वक्त ज़ेरे गौर हैं और जल्द ही इनका ऐलान कर दिया जाएगा। मुआहदे के कई अनासर के साथ मरबूत शक्ल में आबनाए हुर्मज़ भी खोल दी जाएगी। सदर ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने कई इलाकाई रहनुमाओं के साथ एक मुश्तरका टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान इस मुमकिन मुआहदे पर तबादला ख्याल किया और ये गुफ्तगू बहुत अच्छी रही है। ट्रंप के मुताबिक सफारती मुज़ाकरात में तुर्की, सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान, मिस्र, उर्दन, मुत्तहदा अरब अमारात और बहरीन के आला हुकाम और रहनुमा शरीक थे। एक्सियस ने एक अंदरूनी जरिए के हवाले से शाया करदा खबर में कहा है कि मुश्तरका काल में शरीक तमाम इलाकाई रहनुमाओं ने ट्रंप पर जोर दिया है कि वो इस मुआहदे को आगे बढ़ाएं। जराए के मुताबिक इलाकाई रहनुमाओं का मुश्तरका पैगाम यह था कि जंग का खात्मा पूरे खित्ते के बेहतरीन मुफाद में है। ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में सामने आई है जब वाशिंगटन और तेहरान पाकिस्तान की सालिसी में तजावीज और जवाबी तजावीज पर मुजाकरात कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि इस्लामाबाद की क्यादत में होने वाले मुजाकरात में आबनए हुर्मुज को दोबारा खोलने की शरायत, तेहरान के जौहरी प्रोग्राम से मुतलक खदशात के हल और बाहमी पाबंदियों में नरमी के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करने पर तवज्जो मरकूज की गई है। अमरीका और ईरान 60 रोजा जंगबंदी में तौसी के मुआहदे के करीब पहुंच गए हैं। एक्सियस ने मुजवजा मुआहदे से वाकिफ अमरीकी अहदेदार के हवाले से शाया करदा खबर में कहा है कि आबनए हुर्मुज को खोलने, ईरान के तेल की फरोख्त दोबारा शुरू करने और तेहरान जौहरी प्रोग्राम पर मुजाकरात के लिए मोहलत की खातिर अमरीका और ईरान 60 रोजा जंगबंदी में तौसी के मुआहदे के करीब पहुंच चुके हैं। खबर में कहा गया है कि ताहाल गैर हतमी इस मुआहदे के बरोस इतवार ऐलान की तवक्को है। तहम हुकाम ने खबरदार किया है कि मुआहदे के आखिरी लम्हात में भी नाकाम हो सकने की खदशात मौजूद हैं। मुजवजा मुफाहमती यादाश्त के मुताबिक ईरान आबनए हुर्मुज में बिछाई गई बारूदी सुरंगें साफ करेगा और जहाजों को बिला मुआवजा गुजरने की इजाजत देगा। इसके बदले वाशिंगटन ईरानी बंदरगाहों पर आयद नाकाबंदी खत्म करेगा और तेहरान को 60 रोजा मुद्दत के दौरान आजादाना तौर पर तेल फरोख्त करने की इजाजत देने के लिए महदूद पाबंदियों में नरमी करेगा। एक अमरीकी अहदेदार ने इस इंतजाम को कारकर्दगी के बदले नरमी करार दिया और कहा है कि इक्तसादी सहूलत पेश की नहीं बल्कि ईरान के अमले इकदाम के बाद फराहम की जाएगी। मुसवदे में यह भी शामिल है कि ईरान जौहरी हथियार नहीं बनाएगा, यूरेनियम अफसूदगी बंद करेगा और ज्यादा अफसूदा यूरेनियम के जखीरे के खात्मे से मुतलक मुजाकरात करेगा। मजीद वसी पाबंदियों में नरमी या ईरानी सासों की रिहाई पर जंगबंदी के दौरान बातचीत होगी, ताहम इस पर अमल दरामद सिर्फ हतमी और काबिल तस्दीक मुआहदे के हिस्से के तौर पर होगा। खित्ते में तायुनात अमरीकी अफवाज 60 रोजा मुद्दत के दौरान अपनी मौजूदा पोजीशन पर बरकरार रहेंगी और सिर्फ हतमी मुआहदा तय पाने की सूरत में वापस बुलाई जाएंगी। सऊदी अरब, कतर, मिस्र, तुर्की, पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात समेत कई अरब और मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं ने इन सफारती कोशिशों की हिमायत की है। पाकिस्तान फील्ड मार्शल आसम मुनीर के दौरा तेहरान के साथ सालिसी में मरकजी किरदार अदा कर रहा है। व्हाइट हाउस को उम्मीद है कि बाकी मसाइल चंद घंटों में हल हो सकते हैं। तमाम अमरीकी हुकाम ने कहा है कि अगर वाशिंगटन इस नतीजे पर पहुंचता है कि ईरान जौहरी मुजाकरात में संजीदा नहीं है तो जंगबंदी कबल अज़ वक्त ख़त्म की जा सकती है।

0: ये खबरें सदाए तुर्की की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं।
1: ईरान ने इतवार के रोज जारी करदा बयान में अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो को हकायक मस्ख करने का कसूरवार ठहराया और कहा है कि हम मार्को रूबियो के दौरा भारत के दौरान तवानाई की आलमी मंडियों और तेहरान के जौहरी प्रोग्राम से मुतल्लिका बयानात को मुस्तरद करते हैं। भारत में ईरानी सफारतखाने ने जारी करदा बयान में कहा है कि ऐसे इल्जाम खित्ते के हकायक को तोड़ मरोड़ कर पेश करने और अमरीका और सेहूनी हुकूमत की अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाली पॉलिसियों से तवज्जो हटाने की कोशिश है। रूबियो ने हफ्ते के रोज कहा था कि अमरीका ईरान को तवानाई की आलमी मंडी को यरगमाल बनाने की इजाजत नहीं देगा और तेहरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकेगा। ईरानी सफारतखाने ने कहा है कि गुज़श्ता बरसों में तवानाई की आलमी मंडी को यरगमाल बनाने वाली चीज दरअसल अमरीका की जानब से ईरान की तेल बरामदात पर आयद गैर कानूनी और गैर मुनसफाना पाबंदियां हैं। ये पाबंदियां बैन अवी कानून और अकवा मुतहदा के मंशूर के असूलों के खिलाफ डिजाइन और नाफिज की गई हैं और इनका मकसद ईरानी अवाम पर

और फौत हो जाने वाले दादा की याद में उसको पानी दिया जाता है। जब फसल की कटाई का वक्त आता है तो ये खेत महज पैदावार का इलाका नहीं रहते बल्कि यादों का एक मैदान बन जाते हैं। फदवा तुकान अपनी नज्म ज़मीन की पुकार में इसका ऐलान यूं करती हैं, क्या मैं यहाँ किसी अजनबी ज़मीन पर एक अजनबी की तरह मरने के लिए रुकूं? क्या मैं रुकूं? ये किसने कहा? मैं अपनी महबूब ज़मीन की तरफ लौट जाऊंगी, क्योंकि यहाँ रहना सिर्फ एक जुग्राफियाई तरजीह नहीं है, ये वाबस्तगी की एक शक्ल है। जैतून के दरख्त की कहानी इन ज़मीनों में हज़ारों साल पुरानी है। मजदो और बेसान के इलाकों में होने वाली आसार कदीमा की खुदाइयों में जैतून की 4000 साल से ज़्यादा पुरानी गुठलियाँ मिली हैं। बैत लहम में तो 5000 साल से ज़ायद उम्र के ऐसे दरख्त हैं जो आज भी खड़े हैं। यानी एक ऐसे दरख्त का तसव्वुर करें जो सल्तनतों से ज़्यादा तवील उम्र पाता है और हर दौर में एक ही काम करता है, गवाही देना। लेकिन जैतून सिर्फ एक अलामत नहीं है, ये फलस्तीन में ज़रई ज़मीनों का तकरीबन निसफ हिस्सा है। ये लाखों ख़ानदानों का ज़रिया माश है। यहाँ जैतून का एक दाना भी महज खुराक नहीं है बल्कि एक घर के तसलसल की ज़मानत है, इसीलिए इसे सब्ज़ सोना कहा जाता है। मगर यह सोना कब्ज़े के साए में हमेशा ख़तरे में रहता है। काबिज़ इसराइली अफवाज और आबादकार बरसों से मुनज़्ज़म तरीके से लाखों जैतून के दरख्तों को उखाड़ और जला रहे हैं। जैसा कि समीउल कासिम ने अपने इस बावकार अंदाज गुफ्तगु में कहा, मैं सीधा तन कर चलता हूँ, अपना सर बुलंद करके चलता हूँ, मेरी मुट्ठी में जैतून की एक शाख है और मेरे कंधे पर मेरा जनाजा है, मैं चलता हूँ। अपने जहन में तस्वर कीजिए एक बूढ़ी फलस्तीनी दादी का जो बुलडोजर के सामने सदियों पुराने जैतून के दरख्त को गले लगा कर खड़ी है, वो अपने जिस्म को ढाल बना लेती है ताकि वो दरख्त ना कटने पाए, क्योंकि एक दरख्त को काटना एक कौम के हाफ़िज़े और तारीख को काटना है। दुनिया के लिए जैतून की शाख अमन की सबसे मुकद्दस अलामत है, लेकिन फलस्तीन में जैतून की शाख ढाए जाने वाले जुल्म के खिलाफ एक ना खत्म होने वाली मुज़ाहमत है। जब अमन की अलामत ये दरख्त जलाए और उखाड़े जाते हैं तो फलस्तीनी किसान जिद के साथ उखाड़े गए हर दरख्त की जगह एक नया दरख्त लगा देते हैं। जैसा कि तौफीक ज़ियात ने अपने गैर मुतज़लज़ल अज़्म के साथ कहा था, हम यहाँ कायम रहने वाले हैं, अगर चाहो तो जाकर समंदर पी लो, हम यहाँ इंजीर और जैतून के साए की हिफाजत करेंगे। सामिन, जैतून का दरख्त इन ज़मीनों में महज एक पौधा नहीं है, यह सब्र की एक वाज़ शक्ल और एक खामोश मुज़ाहमत है। फ़िलिस्तीन की यह ना ख़त्म होने वाली कहानी किताब के सफहात पर नहीं बल्कि उन जड़ों के दरमियान लिखी हुई है, क्योंकि कुछ जड़ें ऐसी होती हैं जिन्हें जितना भी काटा जाए मिट्टी उन्हें याद रखना नहीं छोड़ती और वह दोबारा आसमां की तरफ बढ़ने से कभी बाज नहीं आती। आइंदा हफ्ते तक अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।

मरकज में किसी बिरन मुल्क की चिप लगाते हैं तो इस निजाम का मुहर्रक मुकम्मल तौर पर आपके हाथ में और कंट्रोल में नहीं होता। तुर्किया अपना सिलिकॉन ब्रोय कार लाते हुए इस मुहर्रक को कौमी माहियत दिला रहा है। इससे भी अहम मोटरसाज सनत का इंकलाब है। तुर्किया के फखर टो के सड़कों पर आने के साथ स्मार्ट डिवाइस से मंसूब इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए दरकार पावर मैनेजमेंट चिप्स और सेंसर चिप्स हमारे मकामी इकोसिस्टम का एक दूसरा मरकजी नुकता बन गई है। ये सूरत हाल मरपी टेक्नोलॉजी हदबंदियों के खिलाफ एक फाल दिफा स्मार्ट शहरों के तस्वर के अंदर चरहन इकदाम दोनों की नुमाइंदगी करता है। इन इकदाम के जरिए तुर्किया न सिर्फ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाली एक मंडी बल्कि बसाते खुद टेक्नोलॉजी हसूल का मरकजी अड्डा भी बन रहा है। सामने आज के किस्पे में एक चीज का वाज़े तौर पर मुशाहदा है, माजी आहनी पर्दे की जगह डिजिटल दुनिया का सिलिकॉन पर्दा ले रहा है। मगरब का छोड़ो करने दो दौर भी आल टेक्नोलॉजी में रियासत की हमारे याफ्ता सिक्योरिटी पर मरकूज और एक मतमी के लिहाज से मनसूबा बंद दौर को रास्ता दे रहा है। जबकि आलमी जद्दोजहद में सुपर पावर एक दूसरे की संतों को तबाह करने के लिए बरामदात पर पाबंदियां और कोटा आयद कर रही हैं। तहम इन जोग्राफी सियासी हलचल के दरमियान तुर्किया का मौकफ बिल्कुल मुख्तलिफ है। अपने तुर्किया सदी विजन के साथ हमारा मुल्क न सिर्फ मशरक मगरब के दरमियान डेटा की तरसील होने वाला एक पुल है बल्कि फैसला साजी का एक मरकज बनने की राह पर गामजन है, जो डेटा पर काम करता है, चिप्स तैयार करता है और इन्हें बेचता है। काम करता इंक्यूबेशन सेंटर्स, चिप डिजाइन हाउसेस और फाउंड्री के शोभा जात में सरमाकारी के साथ तुर्किया आलमी सिलिकॉन मार्केट में अपने हिस्से के किस कदर करीदी होने की मोहर सबत कर रहा है। आइए अब इस चीज पर गौर करते हैं। चिप्स अब सिर्फ कंप्यूटर, फोन या कारों में हार्डवेयर नहीं है, ये साइबर सिक्योरिटी मसनू जहां की दौड़ और डिजिटल तब्दीली में एक रियासत की स्ट्रेटेजिक मुजामत की अलामत भी है। मगर वह मशरक की बड़ी फर्में जोग्राफी सियासी तनाव सप्लाई के बहरान और तले कुछ दी जा रही हैं तो तुर्किया का मुतहरिक बसीरत पर मबनी सरमाया अनातोलिक हिकमत को आला टेक्नोलॉजी के साथ जोड़कर एक नई कसौटी का संग बुनियाद डाल रहा है। अमेरिका चीन के अरूज के बखिलाफ चिप पाबंदियों के साथ बेदार हो रहा है। यूरोप टेक्नोलॉजी इन्हसार की तलख हकीकत का सामना कर रहा है तो तुर्किया स्ट्रेटेजिक आजादी का किला बनने की तरफ साबित कदमी से पेशरफ कर रहा है। दिफाई सनत से लेकर तवानी की राहदारी तक, चिप डिजाइन से लेकर आला टेक्नोलॉजी तक हमें वसी मैदान में तुर्किया सदी के कदमों की आहट सुनाई दे रही है। सामने इसके साथ ही हमारा आज का सिलसिला प्रोग्राम इख्तिताम पज़ीर होता है। आइंदा हफ्ते दोबारा पेश खिदमत होंगे, तब तक के लिए अपने मेजबान इमरान ओपल को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। जुग्राफियाई माईशत।